अपनी ही जिंदगी को थोड़ा समझने की इस मॉर्निंग हम कोशिश कर रहे हैं आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में, और इस शो में आपके साथ हमेशा की तरह आज भी सताक्षी है। वैसे जब कोई रास्ते पर हम पर चिल्ला देता है या ऑफिस में हमसे सही से बात नहीं करता तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा ना। पर कभी सोचा है कि शायद वो इंसान किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, या उसका मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो, शायद उसके घर में कोई बीमार हो, या शायद उसकी तबीयत ही ठीक ना हो। जब हम सामने वाले के बिहेवियर के पीछे छुपे उसके दर्द को देखने की कोशिश करते हैं ना दोस्तों, तो हमारा गुस्सा गायब हो जाता है और हम उस इंसान को क्या कहते हैं, बेचारा कितना परेशान है ना। तो बस तुरंत किसी पर फैसला सुनाने से या उसे जज करने से पहले एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देखिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रिस्वानी पर।

जी आपके ब्रेकफास्ट शो को सताक्षी के साथ आप इस वक्त सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। दोस्तों जब पतझड़ आता है ना तो पेड़ अपने सारे पत्तों को झाड़ देता है। क्या आपने कभी किसी पेड़ को रोते हुए या डरते हुए देखा है ऐसा करने के बाद? नहीं, क्योंकि उस पेड़ को यकीन होता है कि ये पत्तों का जाना एंड नहीं है बल्कि नए और हरे पत्तों के आने की तैयारी है। जब हमारी लाइफ में चीजें छूटने लगती हैं, फिर चाहे वो कोई नौकरी हो, कोई रिश्ता हो या पुराना शहर हो, हम अक्सर डर जाते हैं। पर अगर पतझड़ ना आए तो बसंत भी कभी नहीं आ सकता है। दोस्तों बदलाव से डरिए नहीं, वो एक नए मौसम का इनविटेशन है आपको, तो उसे पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ एक्सेप्ट कीजिए। और उसी एक्सेप्टेंस के नाम ये अगला ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

यहाँ मॉर्निंग्स बहुत ही खास हो जाती हैं जब मॉर्निंग में ढेर सारा ज्ञान देने के लिए सताक्षी आपके साथ हो। और ज्ञान का यही सफर इस वक्त चल रहा है रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर। आप मेरे साथ सुन रहे हैं दोस्तों इट हैपेंस। अच्छा मान लीजिए थोड़ा सा ज्ञान और ना, मान लीजिए कि बाहर तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज, और आपको बाहर जाना है। अब क्या आप आसमान की तरफ देखकर चिल्ला सकते हैं कि भाई बारिश रोक दो मुझे जाना है? नहीं ना। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने हाथों में एक अम्ब्रेला ले सकते हैं या फिर आप रेनकोट पहनकर बाहर जा सकते हैं। यू नो जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो हमारे बस में नहीं है जैसे दूसरों का दिमाग, सिचुएशंस या फिर मौसम, और दूसरी वो जो पूरी तरह से हमारे वश में है जैसे हमारी अपनी सोच, हमारा रिएक्शन और हमारी मेहनत। जब आप उन चीजों पर एनर्जी लगाना बंद कर देते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन्हें आप बदल नहीं सकते, तो आपका आधा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो अपना छाता खोलिए और मौसम का मजा लीजिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रिस्वानी पर।

भाई देखिए, सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि सक्सेस का मतलब है बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी पोजीशन और महंगी गाड़ियाँ। लेकिन क्या फायदा उस बड़े घर का जहाँ रात को नींद की गोली खाकर सोना पड़े? क्या फायदा उस महंगी गाड़ी का जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की तरफ ले जाए? रात को 10 बजे अगर आपका मन शांत हो जाता है, दिल में कोई गिल्ट नहीं रहता और आप अपनों के साथ सुकून का डिनर कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक हैं। और आपकी सक्सेस के नाम ये गाना तो बनता है। सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वाली।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

सो वेलकम बैक मॉर्निंग वाले शो इट हैपेंस को सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर। यू नो दोस्तों, आप सबकी जिंदगी, इनफैक्ट हम सबकी जिंदगी एक ब्लैंक कैनवस है और कलर्स का बॉक्स आपके हाथ में है, पेंटिंग ब्रश भी आपके हाथ में है। अगर कोई बाय चांस आपकी जिंदगी में काला रंग भर भी जाए तो दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि आपके हाथ में कलर बॉक्स भी है और पेंटिंग ब्रश भी है, याद है ना। तो उसी काले रंग के इस्तेमाल से आप तारों भरा एक खूबसूरत आसमान भी तो अपने लिए पेंट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं। सारा जो खेल है वो लाइफ को देखने का है, हमारे नजरिए का है, और आप पेंटिंग में तो माहिर है ही। फिर चलिए जितना हो सके अपनी जिंदगी को, इस कैनवास को खूबसूरत बनाइए। और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

वेल फ्रेंड्स, ये था आज इट हैपेंस पर मेरा आपके साथ एक और जबरदस्त साथ। आई होप कि आपने भी जरूर इंजॉय किया होगा। तो बस इस साथ की खूबसूरती यही है कि हर रोज हर मॉर्निंग आप इस साथ में मेरा साथ निभाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। कल फिर से कुछ नई बातों, कुछ नए जज्बातों और ढेर सारे गानों के साथ कल की सुबह आपसे होगी एक और मुलाकात। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदगी को जीते रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

ਰੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਠਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। उधर फ्रांस विच सिख्या बजट ते स्टाफ की घाट नूं लैके विद्यार्थियों वल्लों कीते जा रहे देश पद्धरी प्रदर्शनां ते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वड्डा बयान दिता है। ट्रंप ने दावा किया है कि फ्रांस विच चल रहा विरोध प्रदर्शन बेकाबू हुई इमीग्रेशन का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम द्वारा देश ते कब्जा करने की कोशिश है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल ते पोस्ट करते हुए लिखा है कि फ्रांस विच जो कुछ वापर रहा है वह बेकाबू हुई मास माइग्रेशन कारण हो रहा है। यह मुद्दा स्कूल नहीं सगो ए इस्लाम द्वारा एक महान देश ते कब्जा करने की कोशिश है। ट्रंप का यह बयान अजिहे समय विच आया जदों पैरिस सने पूरा फ्रांस प्रदर्शनों विच किरिया होया ते विद्यार्थी ते लखां लोग एजुकेशन सिस्टम विच सुधार दीआं मंगां नूं लैके सड़कां ते उतरे हुए हन। तो हुण तक दे अहम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देण दे लई तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तो सानू ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी biswani@biswani.com। इस दे नाल ही तुसीं साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे जरिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो बिस्वानी 1.01। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तक लई दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। हाँ तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बरसानी वंसर वन एम ते जी आर जी संदेश शोलक दे नाल सी बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसीं की गाणा है तुसीं जुड़ना साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बरसानी वंसर वन एम साडा फेसबुक पेज है जी बरसानी एट बरसानी डॉट कॉम साडी ईमेल आई डी है जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसीं ओह अपनाओ पर साडे गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे गल्लां बातां करनियां।

वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ साल खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत का नाम रोशन किया है। BFTA कांस वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसा जिन्हां ने विदेश विच वाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे तो थोनों पता होना बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज दे विच हैगियां है। तो अदर लैंग्वेज जिहड़ी आउंदी हैगी है तो उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तो चल मैं तुहानूं दस्सदी हां ते जे तुहानूं समझ आउंदी होई तां जरूर देखियो क्योंकि ये फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचे कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 FM ते जी आर जी संदेश अलग दिन बने हुए हूँ। इन फिल्मों के जड़िया पूरी दुनिया के छाइया हुई ने तो जी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ तो इस विच सब तो पहला नाम जो आता है वह हैगा बूंग जी। हाँ ये लक्ष्मी प्रिया देवी के निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग फिल्म का नाम। तो बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतियां नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारी।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस।
4: यार राहुल, बिल्ड ऑन क्लास का क्या हुआ?
5: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
4: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
5: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी वन सर वाले हम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे, फिल्म का नाम हैगा मसान। नीरज गायवान दी डेब्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां, देवी जिस जो रिचा चड्डा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है कि ऑल दैट ब्रीड्स। ए नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो, ये हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीड्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है। 2023 ऑस्कर के लिए नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलां नूं बचाते हैं कि नहीं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते सनडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं कि नहीं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिलया है।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: बियॉन्ड व्हाट यू सी, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Only God can judge me, that right?
4: मेरे राह दी मकामा नाल पक ठक सहज सुभा नूं रख।

अजीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मवाणी 101.1 ते जी आर जी संदेश अलग दिन आप से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम है इस लिस्ट विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नूं करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस्सनी आ उह हैगी आ जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविन चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच है ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: Ke alam mein nasha ho jab tere rukhsar dekhoon, khuda ne jab tarasha hoga wo asrar dekhoon. निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

जी देखो वेड़ा तो हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर जाने तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी से मैं सोचा वह भी दस ही दिनी है। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिपलिन जी है। चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित हैगी है। फिल्म वेनिस फिल्म फैसटिवल एफ आई पी आर ई एस सी आई अवार्ड मिलिया है। अल्फोंसो कुआरोन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा दी कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर है करो तुम साढ़े रेडियो बरसवानी 101.1 FM साथ फेसबुक पेज है जी बरसवानी @bersawani.com साथ ईमेल आई डी है जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो है ना। ते बाकी मैं तो यही कहना कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखे करो। सत श्रीकाल।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
10: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
11: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
10: अच्छा, वो क्या?
11: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
11: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। फ्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड, और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

कैसे हूँ आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, थर्सडे का दिन है, वीकेंड की ओर हम जा रहे हैं और उसकी खुमारी, उसकी खुशी आपके मन में छा गई होगी। जी हाँ, हवाओं में आ जाता है उसका नशा, तो उसकी खुमारी आपके जहन में कैसे नहीं आएगी। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बढ़िया से गाने के साथ। लेकिन गाने से पहले रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करने के लिए होता है हमें हमेशा, और वो है एक हेल्दी रिचुअल। एक हेल्दी रिचुअल जो हमें हेल्दी रखता है, हैप्पी रखता है, और हैप्पी के साथ साथ हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्वस्थ रखता है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। सुना होगा आपसे, आपने किसी से कि अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लंबी गहरी सांसें लो, गुस्सा आ रहा है, लंबी गहरी सांसें लो, नर्वस हो, लंबी गहरी सांसें लो। सो ये जो लंबी गहरी सांसें है ना, वो एक इलाज है बहुत सारी चीजों का। सो आइए वही करते हैं। सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत होगी एक बढ़िया से, प्यारे से, क्यूट से गाने से। जी हाँ, जो आपके दिल को प्यारा प्यारा फील करवाएगा, और उस गाने का नाम है बुद्धू सा मन। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, अर्ष के साथ चुनरी चुनरी हो गया, शुरुआत भी हो गई है प्रोग्राम की। अब जरा चलते हैं मौसम की ओर, क्या कह रहा है मौसम, क्या कह रहा है टेम्परेचर, क्या कह रहा है वेदर। जी हाँ, सो सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के करीब देखा गया। वहीं अगर बात की जाए अभी की तो 21.5 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 21.4 डिग्री सेल्सियस के करीब। वहीं रात की बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आप देख पाएंगे। 30% चांसेस बारिश के थे आज, जैसे मैंने कहा था कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई होगी, बाकी सब एकदम बढ़िया था। थोड़े बहुत बादल थे बट उसके अलावा एकदम सही था सब कुछ। और एयर क्वालिटी की बात की जाए तो वो है एकदम फेयर। जी हाँ, आज की तो ये बात हो गई, मतलब आज जो टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं वो आप अगले दो दिन में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगले दो दिन में गर्मी होने वाली है, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे को मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि कल का मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे यहां पर दिखने को मिल रहा है 28 डिग्री सेल्सियस के करीब और 20% चांसेस है बारिश के, विच इज अगेन ना के बराबर, और बादल जो है इसमें है। वहीं अगर सैटरडे की बात की जाए तो 31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा और 30% चांसेस होंगे बारिश के, बीच में थोड़े बहुत बदरा होंगे, थोड़ी बहुत बारिश होगी बट उसके अलावा गर्मी होगी। जी हाँ, सो सैटरडे को 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि अगले दो चार दिन उसके बाद आपको वही मिलने वाला है, फिर उसके बाद भर के बारिश होगी और फिर से वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। सो आपको पता ही है, हमेशा ऐसा ही होता है, थोड़ी सी गर्मी होती है, बारिश उसको फिर से नीचे ले आती है, टेम्परेचर जो है जो एकदम गर्मा गर्म हो जाता है वो फिर से नरमा नरम ठंडा हो जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ बारिश। सो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। सो सैटरडे को गर्मी बढ़ने वाली है, इसी के साथ यहाँ पर अब जरा आपको एक और खूबसूरत सा गाना सुनाने का वक्त हो गया है।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा प्रोग्राम की शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं, तो चलते हैं आगे की ओर। और आगे की ओर से मेरा मतलब है आपके फेवरेट चीज की तरफ, और आपकी फेवरेट चीज से मेरा मतलब आपकी फेवरेट गानों की तरफ। जी हाँ, सो गाने हम भी आपके लिए प्ले करते हैं, लेकिन गाने आप भी अपने लिए प्ले करवाते हो, अपने नियर एंड डियर वंस को डेडिकेट करते हो। और मतलब वही है जो आप सोच रहे हो, मतलब आप अपने फेवरेट गाने फरमाइश कर सकते हो हमारे इस प्रोग्राम में, और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। ऑलरेडी आप हिस्सा हो, लेकिन और भी अच्छे से बन सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से अपना फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। नंबर क्या है? जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, +91 82 888 71701। आई रिपीट, +91 82 888 71701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ बॉलीवुड से बहुत सारी खबरें जो हैं यहाँ पर आ रही हैं। एक अच्छी खबर है और एक बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए कि एक बहुत ही चमकदार सितारे ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नाना पाटेकर जी की। आज उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया, आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और वो चले गए हैं। जी हाँ, ऑफकोर्स वो गए हैं, लेकिन उनकी आर्टिस्ट्री जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनके वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, उनके वो अनकन्वेंशनल कैरेक्टर्स, उनका वो इंटेंस कैरेक्टर्स, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे। नाना पाटेकर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव, आई मीन वी हैड। बट हुआ क्या, आइए जरा आपको वही बताते हैं। सो कुछ वक्त से उनको सर में दर्द रह रहा था। वो अपने गोवा के रेजिडेंस में रह रहे थे और उनके साथ उनका नेफ्यू भी जो है वो वहीं रहता था। उनके नेफ्यू ने बताया कि कैसे वो कुछ दिन से सर दर्द की बारे में बात कर रहे थे और फिर जब हमने उन्हें देखा आज तो वो बेहोश पड़े हुए थे। उनको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाकर 45 मिनट्स तक डॉक्टर्स ने उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। जी हाँ, और अंततः नाना पाटेकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब एग्जैक्टली रीजंस जो हैं वो डॉक्टर्स ने नहीं बताए हैं, पर कार्डियक अरेस्ट जो है वो अभी तक पता चल रहा है। डॉक्टर्स ने जितना कहा है और जितना बताया है उस हिसाब से कार्डियक अरेस्ट जो है वो उन्हें आया और उस वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए और टाइमली वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि नाना पाटेकर ने आज अलविदा कह दिया इस दुनिया को, लेकिन वो जहां भी जाएंगे वहां भी एकदम माहौल बना देंगे, क्योंकि उनकी जो शख्सियत थी वो थी ही वैसे। अगर आपने उनको देखा हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे ही वॉज अ फाइनेस्ट एक्टर्स, ऑफकोर्स वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर, बट अगेन उनकी जो शख्सियत थी, मतलब उनके जो बात करने का तरीका था, उनका जो जिंदगी को जीने का तरीका था, वो भी एकदम लाजवाब था, एकदम हटके था। और हम यही कहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, और जहां भी वो जाए हमेशा हमेशा हमेशा चमकते रहें जैसे वो यहाँ चमकते रहे हैं। दोस्तों, नाना पाटेकर की रुखसती के लिए मेरे दिमाग में और हमारे पास जो है वो एक ही गाना है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये गाना ना कहीं बहुत सेंस बनाता है इस चीज़ में। सो ऑफकोर्स नाना पाटेकर आज गए हैं तो उन्हीं के लिए हम ये गाना जो है

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
2: ਗੋ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਆਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। भाई कुछ भी बोलो, एलन मस्क ना पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा कर आए हैं अपनी, क्योंकि ट्रिलियनर तो वो पहले बन ही गए हैं इस दुनिया के, लेकिन उस पद से, मतलब उस जगह से उन्हें नीचे जाना पड़ा था क्योंकि उनका ट्रिलियनर का जो क्लब था उससे वो बाहर आ गए थे कुछ वक्त के लिए, लेकिन वो फिर से उस ट्रिलियनर क्लब का हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, तो उनकी करंट जो नेटवर्थ है वो 1.28 ट्रिलियन हो गई है। एंड गेस व्हाट, 64 बिलियन के करीब एक ही दिन में कमा लिया है इस इंसान ने। जी हाँ, मतलब 64 बिलियन के करीब एक ही दिन एलन मस्क की नेटवर्थ जो है वो इंक्रीज हो गई। एंड अगेन ही हैज बिकम द ट्रिलियनर। एंड लेट्स बी रियल, हम बिलियनर हैं, हम मिलियनेयर हैं कि हम चिलियनेयर हैं, ये हमें देखना है। जी आई थिंक चिलियनेयर शुड ऑल्सो बी द टर्म, राइट? सो या कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर मस्क, बिकॉज Yeah, you are funny because अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बड़ा फनी काम किया था। इन्होंने ओपन एआई और सैम ऑल्टमैन को मोक करने के लिए जो कि उन्होंने डॉट्स निकाला था, उन्होंने उसका यूआरएल ही खरीद लिया। जी हाँ, डॉट का जो है वो वेब एड्रेस ही खरीद लिया उन्होंने, और फिर उसके बाद उसके लिए उन्होंने $20 मिलियन खर्च किए और सैम ऑल्टमैन को उन्होंने लिटरली मोक किया। सो या ही इज पेटी, ही इज फनी, बट देन अगेन ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन प्लान Earth. Hate him, love him, but he is the richest man on planet Earth. And believe it or not, जो चीजें ये करने की सोच रहे हैं कोई भी नहीं सोच रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

मतलब 90s के गानों में ना वो बात है जो आ नहीं सकती किसी और एरा में, कहना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं एक फरमाइशी गीत अब प्ले करने वाली हूँ बिना देर किए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे लिसनर सच में सो ही जाएं इंतजार करते हुए उनकी फरमाइशों का। सो ऑफकोर्स यहाँ पर ये फरमाइशी गीत आया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। गाने का नाम है बहुत ही खूबसूरत, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। चलिए बिना देर किए हुए गाना प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने करने के लिए फरमाइश, बिकॉज वी लव इट। एंड द मूवी इज रेडी बाय द वे, और ये सलमान खान और आसिन की मूवी है, और ये वो मूवीज में से एक है जो सलमान खान की मूवीज मुझे कुछ पसंद है। ऑल्दो आई डोंट थिंक मुझे सलमान खान की बहुत सारी मूवीज पसंद है, रीजन बीइंग कि वो भाईगिरी करने के चक्कर में एक्टिंग भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ कुछ एक्टिंग्स उनकी बहुत ही जबरदस्त है, लाइक तेरे नाम, लाइक बजरंगी भाईजान, लाइक देयर आर सो मेनी मूवीज जहां पर उनकी अच्छी एक्टिंग है। लेकिन वो जो भाईगिरी के चक्कर में वो होता है, बट उसके लिए मैं सलमान खान को कभी भी नहीं बोलूंगी कुछ भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टर का विजन भी होता है। अगर डायरेक्टर अच्छी एक्टिंग करवाना चाहे तो आई थिंक वो कुछ भी करवा सकता है। या दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज कुछ लोग सच में मैजिक करवा सकते हैं। आई मीन लुक एट आदित्य धार, लुक एट संजय लीला भंसाली। सो या रेडी मूवी का ये गाना हमको प्यार हुआ आप सबके लिए। थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइश, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। रहा आपका ये प्यारा सा गाना।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: प्रिया, next month मामा का birthday है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
10: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
9: अच्छा, वो क्या?
10: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
9: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
12: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
10: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
12: ऐसा क्या खास है वहाँ?
10: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
12: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
10: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
13: सासों की माला पे सिमरू मैं.
14: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन, सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम.
15: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना.
14: Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. तो दोस्तों, नॉर्वे ने कुछ जबरदस्त और खतरनाक कर दिया है जो मुझे लगता है कि बाकी सारी कंट्रीज को भी करने की जरूरत है, एंड विच इज बैनिंग द स्मार्ट ग्लासेस इन सम प्लेसेस. जी हाँ, सम पर्टिकुलर प्लेसेस. जी हाँ, आपने सही सुना. तो आपने स्मार्ट ग्लासेस के बारे में तो सुना ही है, आजकल देख भी रहे होंगे. लोग चश्मा पहनते हैं, चश्मे में ही कैमरा होता है. आधे लोगों को पता होता है, आधे लोगों को पता भी नहीं होता है कि बंदा हमको फिल्म कर रहा है या हम फिल्म हो भी रहे हैं. अब बहुत सारे लोग जो हैं वो फिल्म नहीं होना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनकी कोई वीडियो या फोटो ले उनसे बिना पूछे. लेकिन स्मार्ट ग्लासेस नहीं है वैसे. ऐसे तो आप अगर अपना फोन उठाओगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ओ ये इंसान मेरी फोटो लेने की कोशिश कर रहा है, ओ ये इंसान मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, ओ ये इंसान मुझे फिल्म करने की कोशिश कर रहा है. बट इन स्मार्ट ग्लासेस केसेस दैट इज नॉट द केस. जी हाँ, मतलब आप फिल्म हो जाओगे, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा. और अगर आपको पता भी चल रहा है तो आप बेसिकली कुछ कर नहीं सकते थे अभी तक, क्योंकि बंदे ने चश्मा पहना है. अब जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है. अगर आप उसके सामने हो तो वो रिकॉर्ड हो जाओगे, और अगर नहीं हो तो नहीं होगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. लेकिन यहां पर नॉर्वे ने कह दिया है कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा. सो मेटा हो या कोई और कंपनी हो जो भी स्मार्ट ग्लासेस बनाती है, नॉर्वे ने कह दिया है कि हम कुछ जगहों पर बैन कर रहे हैं. लाइक जो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड जितने भी जगह हैं, वहां पर स्मार्ट ग्लासेस जो है वो बैन हो जाएंगे. थोड़ी सी सेंसिटिव जो जगहें हैं उधर भी स्मार्ट ग्लासेस जो है वो बैन हो जाएंगे. और इसके अलावा भी कुछ और जगहों पर वो बैन करने की कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट ग्लासेस. एंड नॉर्वे पहली कंट्री बन गया है जो ये करने वाला है. वेल, यूके ये सोच रहा था करने की लेकिन अभी तक कर नहीं पाया है. लेकिन नॉर्वे ने उसको पीछे छोड़ दिया और कहा कि ओके, यू नो व्हाट, आई डोंट नो व्हेन यू गोना डू इट, बट लेट मी डू इट फर्स्ट. लेट मी डू इट सो दैट एवरी वन कैन फॉलो दिस. जी हाँ, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू फॉलो. सो ऑल द कंट्रीज एंड द गवर्नमेंट शुड डू इट, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जो कि नहीं चाहते कि उनको फिल्म किया जाए. लेकिन इन द केस ऑफ दिस स्मार्ट ग्लासेस थिंग, दे डोंट हैव एनी से. सो ऐसे में ये गड़बड़ है. अगेन, फिल्मिंग और नॉट फिल्मिंग, ये इंटायरली जो है वो इस इंसान के हाथ में होना चाहिए जो कि कैप्चर हो रहा है, जो कि फिल्म हो रहा है. और ऐसे में ऐसी चीजें करना, ये स्टेप लेना जो है वो बहुत ही क्रूशियल था. सो नॉर्वे जो है वो पहली कंट्री बन गया है. एंड आई वंडर कौन सी दूसरी कंट्री जो है वो ये करने वाली है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू से इट. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है, और इसका नाम है मैं हूं दीवाना तेरा.

जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ वक्त हो गया है खबरों की दुनिया की तरफ रुख करने का। मतलब क्या हो रहा है दुनिया में ये आपको बताने का, और सारी जगह से मतलब कि वॉर फ्रंट पे, पॉलिटिकल वर्ल्ड में, सब कुछ ये सब हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले भारत की एक खबर से जो कि दिल्ली से आई है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली से, और वो अच्छी नहीं है। तो सीमापुरी में गिरी इमारत से 4 लोगों के शव बरामद। जी हाँ, दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार को एक बहुमंजिला इमारत गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, डीएम अजय कुमार ने समाचार एजेंसी AANIA को बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा अब तक 3 महिलाओं के शव बरामद हुए हैं, साथ ही एक शव और महिला है और मिला है जो कि एक बच्चे का लग रहा है। उन्होंने कहा चूंकि मलबा सड़क पर गिरा है इसलिए हम ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकते उसके नीचे कोई राहगीर फंसा है या नहीं, इसीलिए हम पूरी सावधानी के साथ काम कर रहे हैं। करीब 75% यानी कि 75% काम पूरा हो चुका है और 25% काम बाकी है। उन्होंने बताया कि हमारा अनुमान है कि अभियान को पूरा होने में अभी 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं। हमारी टीम कल से लगातार बिना किसी ब्रेक के और पूरी रात काम कर रही है। हम राहत और बचाव अभियान को जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस हादसे पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वहीं विधायक वीर सिंह धीगान ने बताया था कि उन्हें बुधवार को 3:30 बजे के करीब सीमापुरी से फोन आया था कि ये इमारत ढह गई है। उन्होंने तुरंत 112 पर कॉल किया और DCP को भी इसकी जानकारी दी। अब इसमें लोगों के मरने का जो नंबर है वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है वो तो अभी वक्त लगेगा वो बताने में, क्योंकि अभी भी तलाश जो है वो जारी है। अभी भी मलबे को जो है वो हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या नंबर है और कितने लोग इसमें मारे गए हैं।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज जेनिविया के साथ। दोस्तों, खबरों की बात हो रही है और अब जरा चलते हैं अगेन भारत की एक खबर की तरफ, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के चीफ ने कुछ धांधली की है वोट्स में और उस वजह से जो है वो बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई है, ये ऑपोजिशन कह रहा है। जी हाँ, सो यहां पर प्रोटेस्ट जो है वो खतरनाक हो गया है। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है और 8 अक्टूबर को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इस मौके पर पार्टी देश भर में भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस मनाएगी। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन का रिजल्ट क्या है वो अभी भी देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो अगेन जबरदस्त है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मिस्टर ट्रंप भी कुछ कह रहे हैं। वेल, वो जब भी बोलते हैं कुछ फनी बोलते हैं, या लिटरली मतलब जिसकी कोई सेंस नहीं बनती वही चीज बोलते हैं। लेकिन यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, आइए जरा आपको बताते हैं। सो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, मैंने 8 युद्ध रुकवाए। और वो जो अशांति फैलाई, मतलब खुद युद्ध शुरू भी तो किया है, उसका क्या है, उसका फिर पुरस्कार भी आपको देना चाहिए कि ओ अशांति का भी फिर आपको दे देते हैं। नोबेल पीस प्राइज नहीं बल्कि वॉर प्राइज भी इनको मिलना चाहिए, क्योंकि लेट्स बी रियल, 8 युद्ध रुकवाए या नहीं रुकवाए वो तो अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन युद्ध जो है वो एक बहुत ही खतरनाक शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे कंट्रीज जो है वो सफर कर रही है, लिटरली सफर कर रही है, मतलब इन्फ्लेशन रेट, रिसेशन, पता नहीं क्या क्या आने वाला है। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि किसी भी राष्ट्रपति ने कभी कोई युद्ध खत्म नहीं कराया, मैंने 8 युद्ध खत्म कराए और शायद दुनिया के पूरी तरह तबाह होने को भी रोक दिया है, इसलिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे की नोबेल समिति शुक्रवार को करेगी। पुरस्कार के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनका फैसला क्या होगा, उनकी ऐसी छवि रही है कि शायद वो मेरे जैसे लोगों को ये पुरस्कार नहीं देते। सत्ता में दोबारा आने के बाद से ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि वह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से ट्रंप ने कहा कि अब शायद वो समय आ गया है कि पिछली बार पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति ने कहा था कि इतिहास में किसी और से ज्यादा इसका हकदार राष्ट्रपति ट्रंप है, उनके जरिए अप्रत्यक्ष रूप से ये सम्मान पाकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर चुका हूं। बिकॉज यू नो व्हाट, दैट वाज द कॉमिक सीन, क्योंकि वेनेजुएलन जो है ऑपोजिशन लीडर से उन्होंने वो अवार्ड ले लिया था, वो पुरस्कार ले लिया था, वो प्राइज ले लिया था। मतलब उनको बुलाया पहले तो जो है वो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट जो थे वेनेजुएला के, उनको किडनैप करवाया, फिर उसके बाद ऑपोजिशन लीडर को बुलाया और फिर उनसे कहलवा दिया कि यू नो व्हाट, मुझसे ज्यादा ये डिजर्व करते हैं इस प्राइज को, और वो उन्हें वो प्राइज देकर जा चुकी हैं। जी हाँ, मुझे ये नहीं समझ आया कि उनको भी क्या सोच के नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने वो प्राइज दे दिया, जो इतनी अलूफ है कि ट्रंप को वो प्राइज दे रही है, ट्रंप को लिटरली, यू नो। यहां पर मुझे थोड़ा सा तो मतलब सोचने पे मजबूर हो जाती हूं मैं कि क्या वो खुद भी हकदार थी इसकी। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। 11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है।

0: किस दुनिया में हो भाई। क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रेज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने का वक्त हो गया है एक प्यारे से कपल को, एक बॉलीवुड कपल को, जो कि अगेन एक खुशखबरी लेकर हमारे पास आ गया है। जी हाँ, और मैं बात कर रही हूँ मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी मल्होत्रा की। जी हाँ, ऑफ कोर्स दोनों जो कि प्राउड पेरेंट बने थे एक गर्ल चाइल्ड के बैक इन नवंबर 2025, उन्होंने फिर से अनाउंस कर दिया है कि वो फिर से बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड दे कांट बी मोर हैप्पियर। जी हाँ, एंड ऑल्सो वी कांट बी मोर हैप्पियर बिकॉज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द लवली कपल। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आपके घर में खुशियां ऐसे ही बने रहे और ये जो भी नन्हा मेहमान आपके घर में आए वो हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और आप भी हमेशा हैप्पी रहे। मतलब कितनी प्यारी सी बात है। सो सबसे पहले तो बधाइयां जी, बधाइयां, बधाइयां हो। जी हाँ, यही कहना चाहते हैं हम, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आगे बढ़ने का वक्त हो गया है, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

जी दोस्तों, और इसी के साथ एक स्टडी ने प्रूव कर दिया है कि हमारी जो लेडीज हैं, हमारी जो वुमेन है, हमारी जो औरतें हैं, वो मेल्स ज्यादा पेन सफर करती हैं किसी भी बॉडी पार्ट में। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि ओ जी हाँ, यू नो व्हाट, ये बात ना कुछ जो मेन हैं, कुछ जो मेल्स हैं, उनको राज नहीं आएगी, बिकॉज दे आर ऑलवेज लाइक यू नो व्हाट, कोई बात नहीं, दवाई खा लो तो क्या हो गया, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बट वो कभी भी वो चीज अच्छे से फील नहीं करते हैं, वो एम्पथी फील नहीं करते हैं टूवर्ड्स वेमेन। एंड देर आर सो मेनी मेन इन दिस country and in the world, in the entire world, जो कि ऐसा करते हैं। मतलब एक ही जो सबसे बड़ा जो डायलॉग होता है कि यू नो मेडिसिन खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कभी भी दे डोंट फील एम्पथी जैसा उन्हें फील करना चाहिए। और उन्हें लगता है कि जैसे पेन्स उन्हें होते हैं, वैसे ही वुमेन को भी होते हैं, वैसे ही औरतों को भी होते हैं, पर ऐसा नहीं है। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि अगर कोई लेडी, कोई वुमेन, कोई औरत बोल रही है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो उसे सर दर्द किसी भी मेल से ज्यादा हो रहा होगा। जी हाँ, उसे वो अगर कह रही है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसका पेट का दर्द जो है वो किसी भी मेल से ज्यादा होगा, और ये स्टडीज ने प्रूव कर दिया है। जी हाँ, सो एक स्टडी पब्लिश हुई है नेचर मेडिसिन में, जहां पर रिसर्चर्स ने एनालाइज किया है डाटा फ्रॉम मोर देन 6 मिलियन पीपल इन 118 कंट्रीज कवरिंग एजेस फ्रॉम फाइव टू ओवर हंड्रेड। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस वो फाउंड इन हेडेक्स, फेशियल पेन एंड एब्डोमिनल पेन, एंड वुमेन रिपोर्टिंग हायर लेवल्स देन मेन। जी हाँ, पेन इंक्रीज्ड शार्पली बिफोर द एज ऑफ 55 एंड वॉज हाइएस्ट लेटर इन लाइफ, वाइल बैक हिप एंड नी पेन कंटिन्यू टू इंक्रीज विद एज, एंड इट्स वे मोर देन एनी मेन। जी हाँ, सो मैं हमेशा देखती हूँ, और मैंने इनफैक्ट अपने आजू बाजू भी बहुत ऐसा होता हुआ देखा है कि जब भी कोई हमारे घर में, हमारी मॉम या फिर यू नो किसी भी और के घर में कोई लड़की, कोई औरत, कोई महिला ऐसा कहती है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, बट हमने ना वुमेन को ऐसा बना दिया है कि ओ शी इज अ सुपर वुमेन। एंड यू नो व्हाट द फैक्ट इज, कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि औरतें सुपर वुमेन होती हैं, भाई हमको नहीं बनना, सुपर वुमेन नहीं बनना हमको, हम ऐसे ही ठीक है। यू शुड फील कि जो हम फील कर रहे हैं वो एक्सट्रीम है। सो ऐसे में मेन, या इट्स हाई टाइम मेन को ये चीज फील होनी चाहिए कि अगर आपके घर में कोई लेडी है जो बोल रही है उसको सर में दर्द हो रहा है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, उसको टांग में दर्द हो रहा है, या कहीं भी दर्द हो रहा है, तो वो ज्यादा है जितना कि वो फील कर सकते हैं खुद। मतलब अगर उनको खुद को दर्द होगा, उससे कहीं ज्यादा दर्द उस महिला को हो रहा है जो ये कह रही है कि उसके सर दर्द हो रहा है, उसके घुटने में दर्द हो रहा है, या उसके पेट में दर्द हो रहा है। इट्स हाई टाइम। जी हाँ, एंड स्टडीज ने प्रूव कर दिया है, तो अब इसे साइंस बैक कर रही है, तो मुझे लगता है कि आपको फील करना चाहिए एम्पथी टुवर्ड्स योर वुमेन, टुवर्ड्स द लेडीज इन योर हाउस। इट्स हाई टाइम। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड, और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, तो स्वागत है आपका ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट में। नाउ दिस सेगमेंट इज वेरी वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड नॉट जस्ट माई हार्ट, माई लिसनर्स हार्ट टू। सो यहाँ पर ये खास इसलिए है क्योंकि अब हम पूरी तरह से पुराने गाने प्ले करने वाले हैं, कोई नया गाना नहीं होगा। पुराने किस्से होंगे, पुराने गाने होंगे, कुछ हमारी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से, और ऐसे ही बहारें यहाँ पर आ जाएंगी। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, व्हिच आई लाइक लिटरली लव दिस सॉन्ग, दैट्स माय टॉप सॉन्ग व्हेन इट कम्स टू पुराना गाना, और कुछ जो एकदम नंबर वन पे आते हैं ना, इट्स नॉट ए वन सॉन्ग, एक ही गाना नहीं है, दो चार गाने हैं जो कि नंबर वन स्पॉट पे आते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम, एंड इट्स कल्ट फेवरेट, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर एवरी वन, प्रीटी मच एवरी वन, जो भी पुराने गाने सुने हैं जिसने, वो सब इस गाने को प्यार करते हैं, बिकॉज ये है तेरा मेरा प्यार अमर फ्रॉम द मूवी असली नकली, एंड साधना और देवानंद की केमिस्ट्री के साथ चांद को देखते हुए ये खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ अब जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो डेडिकेटेड है एक बहुत ही खास शख्सियत को। जी हाँ, अब मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर एटीट्यूड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एटीट्यूड इसी एक्टर के पास था, इसी एक्टर में था। जी हाँ, जब ये बोलते थे तो देखते भी नहीं थे सामने वाले इंसान के चेहरे की तरफ, बल्कि साइड में देख कर बोलते थे, और जब ये बोलते थे तो लोग सुनने पर मजबूर हो जाते थे। अब आप शायद गेस कर चुके होंगे कि मैं कौन सा गाना, कौन से एक्टर का गाना प्ले करने वाली हूं। रीजन उसके पीछे ये है कि आज उनका जन्मदिन भी है और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम ये गाना आपके लिए प्ले करने वाले हैं। गेस करना चाहेंगे? चलिए, गाना भी उन्हीं का ही है जो हम प्ले करने वाले हैं। सो आप गेस कीजिए मैं कौन से एक्टर के बारे में बात कर रही हूं। लेकिन हाँ, एक बार फिर कहूंगी कि जब वो बोलते थे तो सब सुनते थे। क्यों मैं ये कह रही हूं, गेस कीजिए। और यहाँ पर ये गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, तो अभी तक आप गेस कर ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं नान अदर देन द ग्रेटेस्ट राजकुमार जी की। जी हाँ, राजकुमार जी का जन्मदिन है आज। ऑफकोर्स वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी और वो है जानी। जी हाँ, मतलब वो जानी जैसा वो बोलते थे ना, मुझे नहीं लगता कोई भी कर सकता है। जी हाँ, और लिटरली वो जानी क्यों बोलते थे ये भी एक बहुत ही फनी स्टोरी है विच आई एम गोना टेल यू अबाउट। और ये स्टोरी है उनके कुत्ते की, क्योंकि उनके कुत्ते का नाम जानी था। अब जब लोगों को पता नहीं था कि वो जानी क्यों बोलते हैं, सब सोचते थे कि पता नहीं उनका अपना एक बोलने का स्टाइल है, लेकिन जब मीडिया को ये बात पता चली कि वो अपने कुत्ते का नाम जानी रखे हुए हैं और वो सबको अपने कुत्ते जैसा ही समझते हैं, इसीलिए वो जानी बोलते हैं सबको, तो सबके सर से एकदम जैसे आसमान जो है वो उड़ गया लिटरली। बिकॉज एवरीवन वाज लाइक ओ माय गॉड, पूरा टाइम राजकुमार हमें जानी जानी जानी बोलते रहे, हमें पता भी नहीं था कि वो हमें जानी क्यों बोलते हैं, लेकिन वो जानी इसलिए बोलते थे क्योंकि वो अपने कुत्ते का नाम जानी रखे हुए थे और वो किसी को इतना समझते ही नहीं थे कि उनके कुत्ते से ज्यादा किसी की बिसात हो सके। जी हाँ, इतना ज्यादा एटीट्यूड था उस इंसान में, बट उनकी एक्टिंग जबरदस्त थी, उनका स्वैग जबरदस्त था, उनके बोलने का तरीका, उनकी डायलॉग डिलीवरी वो भी जबरदस्त थी। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये बहुत विवाद के बाद जो उनका हुआ था दिलीप साहब के साथ, कैसे वो उनके घर आए थे एक बार 1:30 बजे, क्यों आए थे, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट। लेकिन पहले आपको सुनाऊंगी मैं एक और खूबसूरत सा गाना जो कि राजकुमार का ही है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक और किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ राजकुमार का। और ये किस्सा भी बहुत ही फनी है, क्योंकि गंगा जमुना जो कि दिलीप कुमार साहब की थी, उस पिक्चर को राजकुमार देखने जाते हैं। और माइंड यू, राजेंद्र कुमार नहीं बल्कि राजकुमार और दिलीप कुमार जो थे वो एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे बहुत पहले, लेकिन कुछ अनबन हो गई थी उन दोनों के बीच में। राजकुमार ने दिलीप कुमार को शॉट के लिए थप्पड़ जो मारना था वो बहुत जोर से मार दिया, उसकी वजह से दिलीप साहब वो शूटिंग छोड़कर चले गए थे। और फिर उन्होंने ठान ली थी कि वो कभी भी साथ में काम नहीं करेंगे। सो ऑफकोर्स दोनों ने ही एक दूसरे को बायकॉट कर दिया था। लेकिन जब मूवी आई गंगा जमुना, उस मूवी को देखकर आते हैं राजकुमार रात को और 1:30 बजे दिलीप साहब के घर की घंटी बजाते हैं। जी हाँ, मतलब आप सोचिए 1:30 बजे की बात है, 1:30 बजे के वक्त था और वो दिलीप साहब के घर पर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, सामने से दिलीप साहब निकल कर आते हैं और वो अंदर जाते हैं। दिलीप साहब उन्हें बैठने के लिए कहते हैं लेकिन राजकुमार बैठते नहीं है। वो कहते हैं, जानी मैं अभी अभी गंगा जमुना देख कर आया हूं। जी हाँ, और उसे देखने के बाद मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही गजब के एक्टर हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही गजब के एक्टर हैं, एक राजकुमार और दूसरा दिलीप कुमार। ये बोलकर वो चले जाते हैं, सुनते भी नहीं है दिलीप साहब क्या कहते हैं, बस इतना ही बोलने आए थे रात को 1:30 बजे क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली मूवी देखी थी गंगा जमुना। और दिलीप साहब ये देखकर इतना हंसते हैं, ही वाज लाइक कि वाह, जानी अपनी ही अदा में रहते हैं, आए कॉम्प्लीमेंट दिया और वहां से चले गए। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही नहीं आया था क्योंकि इससे पहले काफी सारी भगदड़ भी हुई थी। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए, एंड अगेन इसी के साथ हम आपसे विदा भी लेने वाले हैं, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल यानी कि फ्राइडे को, मस्ती करेंगे वो भी धूम धड़ाके के साथ। जी हाँ, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से नहीं है, एक फरमाइशी गीत है मेरी बहुत ही प्यारी लिसनर की तरफ से, तुमको हमारी उम्र लग जाए ना। ये गाना बहुत स्पेशल है क्योंकि इसे काफी बार जो है वो रिकमेंड किया गया है, क्योंकि अपेरेंटली ये गाना मेरे लिसनर्स को काफी पसंद है। सो थैंक यू सो मच इस खूबसूरत से गाने के लिए। मिलते हैं हम आपसे कल, बाय, सी यू, टाटा।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: सारा दिल भी गया और लेवर भी। मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।
2: बाहर

0: मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।
1: हम जीत गए,
2: हम जीत गए।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। 2027 जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ब्रिस्बेन में होगी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने पुष्टि की है कि वर्ष 2027 की नेशनल जूनियर एंड लिटिल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी ब्रिस्बेन को सौंपी गई है, जिससे स्थानीय युवा एथलीटों में भारी उत्साह बना हुआ है। वहीं क्वींसलैंड में नया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू। क्वींसलैंड में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नए ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जिससे ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में रोजगार के अवसर बनेंगे। वहीं ब्रिस्बेन में रक्षा तकनीक और विनिर्माण पर बड़ा सम्मेलन। क्वींसलैंड सरकार ने डिफेंस और विनिर्माण उद्योग को मजबूत करने के लिए नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, जिसमें ब्रिस्बेन की स्थानीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बनाए नए रिकॉर्ड। क्वींसलैंड में लगातार दूसरे महीने बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रिस्बेन नगर निगम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार कर रहा है। इसके साथ सड़क रखरखाव और रीसीलिंग का वार्षिक अभियान शुरू। ब्रिस्बेन शहर के प्रमुख मार्गों और उपनगरों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए परिषद का वार्षिक रोड रीसीलिंग प्रोग्राम आज से शुरू कर दिया गया है। इसके साथ अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ब्रिस्बेन ने नया उपग्रह प्रोजेक्ट। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष के किनारे से वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए एक विशेष सैटेलाइट मिशन की घोषणा की है, जिसमें ब्रिस्बेन की यूनिवर्सिटी का मुख्य योगदान रहेगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का भव्य शुभारंभ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 5G के विस्तार, रोबोटिक्स और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे कई तकनीकों पर चर्चा हो रही है। वहीं GST काउंसिल की 57th बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आज GST परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें छोटे व्यापारियों को टैक्स प्रक्रिया में राहत देने और ऑनलाइन सेवाओं पर लागू कर नियमों की समीक्षा करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश में 21 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। कम बारिश के चलते आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 26 में से 21 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। किसानों के नुकसान की भरपाई और पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य सरकार ने विशेष राहत पैकेज की तैयारी शुरू की है। वहीं SME सेक्टर को मिला 10,000 करोड़ रुपए का बूस्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय मदद देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ग्रोथ फंड को मंजूरी दी है। वहीं वायुसेना दिवस पर भव्य फ्लाइट पास्ट। जी हां, आज भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर विशेष एयर शो और परेड का आयोजन किया गया। सुखोई रफाल और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाकर देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले केमिस्ट्री में 2026 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। वर्ष 2026 के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। वैज्ञानिक हेनरी कागान और केनेसो सोआई को आणविक संरचनाओं यानी कि होमोक्रिडालिटी पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। वहीं फ्रांस में शिक्षा बजट को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। फ्रांस में सरकारी स्कूलों के बजट में कटौती के विरोध में 2.5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पेरिस समेत प्रमुख शहरों के प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें दर्ज की गई। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आईएमएफ की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रमुख ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि दुनिया भर में बढ़ता कर्ज और ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव आने वाले समय में आर्थिक सुस्ती को और बढ़ा सकता है। वहीं यमन में बढ़ते तनाव पर WHO ने जताई चिंता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने यमन में बढ़ते सैन्य संघर्ष और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर गहरा दुख जताया है। वहीं केन्या में इबोला का नया मामला, सीमाओं पर हाई अलर्ट। केन्या में एक यात्री में इबोला वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। आसपास के देशों से लगने वाली सीमाओं पर यात्रियों की सख्त स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। इसी के साथ तुर्की और दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक समझौता। दक्षिण कोरिया और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देते हुए नए व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले लियोनल मेस्सी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को कहा अलविदा। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेस्सी ने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अपने आखिरी मैच में अर्जेंटीना को बेनिन पर 3-0 से जीत दिलाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत दुनिया भर के एथलीटों ने उन्हें बधाई दी। वहीं भुवनेश्वर कुमार की भारतीय T20 टीम में वापसी। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। इसी के साथ 2027 एशियन ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करेगा कुवैत। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने घोषणा की है कि 2027 से पहले एशियन ई स्पोर्ट्स एंड माइंड स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी कुवैत करेगा, जिसमें 4,000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। वहीं चेस ओलंपियाड में डी गुकेश का शानदार प्रदर्शन। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में संपन्न चेस ओलंपियाड में अपनी बेहतरीन रणनीति से भारतीय टीम को बढ़त दिलाई और अपने शानदार फॉर्म को साबित किया। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे
0: तो बढ़त दिलाई और अपने शानदार फॉर्म को साबित किया। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी।

0: किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
0: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
6: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
5: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
6: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस Raffles and Dance the Night Away के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहाइश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्यार में।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: लग जा।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। हाँ बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बरसानी वनसर वन जी आर जी संदेश शोलक के नाल बन चुके हो। ढेर सारिया गल्ला करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। इन्हां गल्लां नूं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसीं की गाणा है तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बरसानी वनसर वन साडा फेसबुक पेज है जी बरसानी एट बरसानी डॉट कॉम साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसीं उह अपनाओ पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे नाल गल्लां बातां करनियां। तां चको तुसीं अपना फोन ते साडे नाल गल्लां बातां करो है ना। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां आउनी आं बस हुणे आउनी आं वापिस उहनां समां तुसीं सुणे जी गीतां नूं इंजॉय भी करो।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।
1: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी वन सर वन एम ते जी आर जे संदेश अलग दिन बने हुए हूँ। इन फिल्मों के जड़िया पूरी दुनिया के छाइया हुई ने, तो ये जी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ, तो इस विच सब तो पहला नाम जो आता है वह हैगा बूंग जी। हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी के निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंगे फिल्म का नाम। तो बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दियां चुनौतियां नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है, जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जाती है कि ना, वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

हां जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.9 ते जी आप जी संदेश अलग दिन नाल तुसी बने होए। अगला नाम इस लिस्ट विच जेड़ा हैगा है वह हैगा जी होमबॉर्न दा। नीरज गायवान वालों निर्देशित फिल्म ईशान खट्ट विशाल जेठवा जानवी कपूर दी है की है तीनों इस लीड फिल्म दे विच लीड रोल दे विच ते मार्टिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस दे। ए ना बचपन दे दो दोस्तां जिन्हां दे विचो एक मुस्लिम है गए ते एक दलित समुदाय दे नाल है गए ता उन्हां दी दोस्ती साहत ते जाति राजनीति दी कहानी है की है। ए भारत दी अधिकारित एंट्री सीगी 88वें ऑस्कर दे लई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दे विच शॉर्टलिस्ट हुई पर नॉमीनेशन नहीं मिलिया। ए धर्मा प्रोडक्शन वालों बनाई गई है ते 26 सितंबर नू रिलीज हुई सी।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां तो तुम दसनी मेरा फर्ज है।

जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 FM ते जी आर जी संदेश शौलक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म जड़ी हैगी है उसका नाम है जी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पायल कपाड़िया की फिल्म हैगी है ते फिल्म 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल विच ग्रैंड पिक्स जीती सीगी। कैन फिल्म फेस्टिवल दे विच कानी कुश्रुति अते दिव्या प्रभा इस विच लीड रोल दे विच है ते मुंबई दिया दो नर्सां दी इमोशनल यात्रा दिखाउंदी है कि है। गोल्डन ग्लोब विच दो नॉमिनेशन बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ते बेस्ट डायरेक्टर ते गोथम अवार्ड्स NYFCCA LA शिकागो आदि तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अवार्ड जीते ने। बाराक ओबामा ने इस नू 2024 दी टॉप फिल्म चुनिया सीगा।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित Authorized by the Queensland Government.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाने एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। ओ फिल्म दा नाम हैगा मसान। नीरज गायवान दी डेब्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्डा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: हर साल केरला विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है कि ऑल दैट ब्रीथ्स। ये नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो, ये हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है। 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलां नूं बचाउंदे है कि नहीं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड ज्यूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते है कि नहीं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिलिया है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
4: मोरी गल गल ते नहीं की।

0: अजीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम है इस लिस्ट दे विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नु करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्या हैगा। इस दे नाल ही होर फिल्म बारे दस दिंदी आ उह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसके प्रतिरोध की कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इसनु बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविंद चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।
1: जदों

0: मामू।
1: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय गाइस, आई एम मनदीप फ्रॉम द मीट ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
7: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
9: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
11: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: House. जी देखो वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लैण दा, पर जाण तो पहला थोड़नू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा वी दस दिनी आ। उस फिल्म दा नाम है जी डिसिप्लिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दी दुनिया ते आधारित हैगी है। फिल्म नू वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच एफ आई PRESCI अवार्ड मिले हैगा, ते अल्फोंसो कुआरोन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से गए। फिल्म एक संगीत साधक दी कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा दी कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर है करो तुम सा रेडियो ब्रिसवानी 101.1 साड़ फेसबुक पेज है जी, brisawani@brisawani.com साड़ी ईमेल आई डी है, जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो है ना। ते बाकी मैं तो यही कहना कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखे करो, सत श्री अकाल।
1: I'm gonna smash your boy. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy.

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: तो उसकी खुशी
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302288009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: ए भाई, बहुत

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405409156 आई रिपीट 0405409156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दी।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

जीवन बहुत अनमोल है ये जीवन, और इस जीवन की सच्चाई को ढूंढने में, यानी हम क्या हैं, क्यों हैं और कहां से आए हैं, ये जानने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम इस सफर में, जीवन आधार में, अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं, शायद मिल जाए हमें। और ये पर्पस जो है, ये किसी जाति धर्म में नहीं बदलता, ये पर्पस जीवन का पर्पस कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, ये एक ऐसा पर्पस है जो हर मनुष्य के मन में है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में है, अगर वो अपनी खोज में है तो। तो अगर आप भी अपनी खोज में निकल पड़े हैं तो बस हमें सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ, और जीवन आधार का ये सफर इस अगले गीत के साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी।

बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर सुबह के हमारे आत्मा को जगाते और मन को शुद्ध करते सफर जीवन आधार में। और इस सफर में आपका साथ कुछ ऐसे गानों के साथ आज मैं दे रही हूँ जो गाने मन को, तन को और बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं। आपको किसी जाति या धर्म से नहीं जोड़ते, आपको इंसानियत से जोड़ते हैं और इंसान बनाते हैं। आपको जीने की सही वजह बताते हैं और जीने की राह दिखाते हैं। अभी एक ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे हमारे जीवन आधार के सफर में आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर श्रोताओं, आप कदम उठाने से डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं, यानी क्या करें क्या ना करें ये सोचकर मन अक्सर घबरा जाता है। पता नहीं आप जो कर रहे हैं उसमें वो ऊपर वाला आपका साथ देगा या नहीं, पता नहीं आपने जो चाहा है वो आपको मिलेगा नहीं, या आपने सही चाहा है या गलत चाहा है। अक्सर मन इस बात के बीच में विचलित होता रहता है। लेकिन अगर एक बार ठान लिया है कि ये करना ही करना है, अगर एक बार मन ने तय कर लिया है कि ये राह अपनानी ही अपनानी है, तो भला मन को विचलित क्यों होने देना। फिर तो जो ठान लिया सो ठान लिया, जब कदम उठा लिया तो रास्ते की परवाह क्यों करनी। फिर तो आपका जो पैशन है, आपकी जो चाहत है, वो आपको आपके लक्ष्य तक ले ही जाएगी, है ना। तो चलिए इसी बात पर आपके लक्ष्य के नाम सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

जीवन आधार। जी हाँ श्रोताओं, यही सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। जीवन आधार हमारा वो सफर है जहाँ पर आप जीने की सही वजह ढूंढ पाते हैं, अपने जीवन का डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान करती है वो ये कि हम इस पृथ्वी पे आखिर है क्यों, यानी हम क्यों हैं यहाँ, हमें क्या करना है। तो बस उसी जीवन को ढूंढने की हमें कोशिश करते हैं जीवन आधार में, और ऐसी ही कोशिश आज एक बार फिर से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए भी बढ़ते हैं आगे इसी सफर में इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

भाग्य। कहते हैं जो भाग्य में एक दफा लिख जाए फिर वो कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी प्रार्थनाओं में वो शक्ति है जो शायद भाग्य का लिखा भी बदल सकती है। यूं ही नहीं कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले उस शक्ति का, उस ऊपर वाले का, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि को चला रहा है। आप किसी भी पद पर हों, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि कोई है जो इस सृष्टि का नायक है और हम सबकी बागडोर उसने अपने हाथ में थाम रखी है और वही भाग्य का रचयिता भी है। तो अगर वो आपसे प्रसन्न है तो भाग्य लिखा हुआ बदल भी सकता है। बस उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो आपका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। और एक बार वो आपको मिल गया फिर आपको वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जाने के बाद एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। दोस्तों, ये है सफर जीवन आधार का। जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, जीने की वजह भी देता है और जीने की वजह छीनता भी है। कभी कभी जीवन में वो दौर आता है जो शायद आप कहते हैं कि आपकी जिंदगी का, आपके जीवन का सबसे बुरा दौर है, लेकिन ये वो दौर होता है जब आपको जीवन में सबसे अच्छा मिलने वाला होता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए ना सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, और जब आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको समझ नहीं आता है। लेकिन उसकी मर्जी अगर हम और आप समझ लेंगे तो फिर हम और आप भी परमात्मा नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो क्या चाहता है, क्या सोचता है वो हमें समझ में नहीं आता, और फिर वो हमें कुछ ऐसा देता है कि हमें लगता है कि शायद हम तो इस लायक थे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत बुरे दौर से गुजरना होता है जब कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला होता है। आइए उसी दौर के नाम जो हमें हिलाकर रख देता है, हमें पूरी तरह से बेबस कर देता है, उस दौर के नाम सुनेंगे अभी अगला गीत, क्योंकि ये वो दौर भी है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ।

सदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM और हमारा आपका ये जो साथ है जीवन आधार पर, ये हर साथ के साथ, हर दिन के साथ और भी मजबूत हो रहा है और जीवन की सच्चाई को, जीवन के आधार को, जीवन के बेस को हम हर रोज सुबह मिलकर साथ में ढूंढते हैं। आज भी एक यही कोशिश इस सफर में और अभी इस अगले गाने के साथ इस कोशिश को अंजाम देंगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर मेरे साथ जीवन आधार।

दोस्तों कहते हैं कि दुश्मनों से हमेशा बच के रहिए, आपने भी जरूर सुना होगा। लेकिन देखा जाए तो दुश्मन या जो लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं वो होते कौन है? वो हमारे अपने ही होते हैं। देखिए, बाहर वालों को नहीं पता कि आपके खिलाफ साजिश क्यों करनी है, उन्हें क्या मिलने वाला है। कोई चक्रव्यूह रचना करके, कोई साजिश करके उन्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर किसी को कुछ मिलना है तो आपके अपनों को ही। और इसीलिए कहते हैं कि कितने भी आप किसी रिश्ते को लेकर इमोशनल क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपनी एक आंख हमेशा खुली रखिए कि उस रिश्ते से भी अगर धोखा मिला तो आप क्या करेंगे। कभी कभी बहुत करीबी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। इसलिए एक जितना भी भरोसा किसी रिश्ते पर हो, एक जो है वो निगाह उस रिश्ते पर ऐसी जरूर रखिए जो उस रिश्ते की कमियों को आपको दिखा पाए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

तो श्रोताओं, ये था जीवन का एक और सफर रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर जीवन आधार। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे थे। कल फिर से इसी सफर में आपसे फिर से मिलूंगी जीवन की कुछ बातों और जिंदगी की कुछ गहरी और बहुत गहरी सच्चाइयों को लेकर। लेकिन अब आज के सफर से इजाजत चाहती हूँ और इस वादे के साथ कि कल लौटूंगी और फिर से जीवन आधार में हम अपनी ही जिंदगी को खोजने का प्रयास करेंगे। आज के सफर से अब दीजिए विदा। नमस्कार।

हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन। फ्राइडे आ गया है और फ्राइडे का मतलब है भाई वीकेंड की खुशबू जो है ना वो ऑलरेडी हवा में है। आप चाहे भाई हमेशा की तरह ट्रैफिक में हो, ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, या स्कूल ड्रॉप कर रहे हो एज यूजुअल, या फिर बस चाय के साथ विंडो के पास एंजॉय कर रहे हो, आज सुबह एक काम जरूर करना। मंडे वाली टेंशन है ना, उसको फ्राइडे के मूड के सामने सरेंडर कर देना। मैं हूँ आपकी मॉर्निंग कंपेनियन चांदनी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। ब्रिस्बेन वॉल्यूम थोड़ा सा अप कर लीजिए क्योंकि अगले एक घंटे होगा न्यूज का भी, म्यूजिक का भी, गॉसिप का भी और वही थोड़ी सी दिल की बातों का भी टाइम। सो दोस्तों, आप सभी ना अपने वीक यानी ये जो फ्राइडे है, वीकेंड है आने वाला जो है, वो उसमें क्या क्या प्लान है जरा बताइए, मेरे साथ भी शेयर कीजिए ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी। आइए फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की इस गीत के साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों जी, तैयारी हो चुकी है आप सभी की बाहर निकलने की, यानी कि घर से बाहर निकलने की। अब वो चाहे स्कूल की बात हो, चाहे वो ऑफिस की बात हो, या फिर ट्रैफिक की बात हो, या अपने पर्सनल काम की बात हो जी, निकलते वक्त अपना ध्यान जरूर रखिएगा और मौसम का भी हाल चाल देख लेना। वैसे तो मैं अपडेट आपको देती रहूंगी। सो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही प्यारा होने वाला है, क्योंकि जी ऑलरेडी सैटरडे की और संडे की खुशी होने लगती है और फिर प्लान्स जो है ना वो ऑलरेडी तैयार रहते हैं। वैसे तो मंडे से ही तैयार रहते हैं कि हम जो आने वाला वीकेंड है उसके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। सो दोस्तों, वीकेंड जो है ना मजेदार होता है। वैसे हर दिन मजेदार होता है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस इसलिए हो जाता है क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे बिजी होते हैं। सो दोस्तों, इंजॉय करने के लिए जानिए आप सभी के साथ है और रेडियो ब्रिस्वानी तो है ही दोस्तों। इसमें आप बहुत ही प्यारे प्यारे कार्यक्रम सुनते हैं, देखते हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ हम भाई सीखते भी है। जी हाँ, आने वाले जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है या हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसका समाधान नहीं निकलता, लेकिन रेडियो ब्रिस्वानी आपको वो समाधान जरूर देता है। तो इसी के लिए और इसी के साथ आप रेडियो ब्रिस्वानी के साथ हमेशा फेविकॉल के जोर जैसा जुड़े रहिए। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

लता जी के लिए कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, लेकिन मैं अपने अजीज दोस्त सार लिधानवी के एक शेर को आप सुना देता हूं। मगर इस रात की तन्हाई में यूं अचानक कई आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागा आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे, शहद सा घुल गया तलखाबाए तन्हाई में, रंग सा फैल गया दिल के स्याह खाने में, देर तक यूं तेरी मस्ताना सदाएं गूंजी, जैसे फूल चटकने लगे वीराने में।

हाँ जी, तो चलिए पहले जान लेते हैं ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। ब्रिस्बेन में एक हाउस पार्टी इंसिडेंट से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन में दो और मैन पर मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं। दोस्तों, इस केस में टोटल चार्ज्ड पीपल की जो संख्या है वो 11 हो गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रही है। ब्रिस्बेन सेफ्टी को लाइटली मत लेना, पार्टी हो, गैदरिंग हो या फिर लेट नाइट आउटिंग, थोड़ा सा अलर्ट रहना हमेशा स्मार्ट चॉइस होता है। इसी के साथ दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

आइए जी इसी के साथ बढ़ते हैं क्वींसलैंड के अपडेट की ओर। क्वींसलैंड में माइनिंग इंडस्ट्री पर हाई कोर्ट के एक जो एमिशंस है उससे रिलेटेड डिसीजन की जो पॉसिबल इम्पैक्ट है उसको लेकर कंसर्न जो है वो सामने आया है। अब एक ब्यूटीफुल ऑस्ट्रेलियन स्काई स्टोरी भी मेरे सामने है दोस्तों। फ्राइडे नाइट ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस यानी कि सदर्न लाइट्स देखने का पॉसिबिलिटी है दोस्तों। स्पेस वेदर एजेंसीज ने मॉडरेट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कंडीशंस को लेकर अलर्ट दिया है। इमेजिन कीजिए दोस्तों फ्राइडे नाइट ठंडी हवा डार्क स्काई और ऊपर डांसिंग लाइट्स। ऑस्ट्रेलिया कभी कभी ना सच में मूवी सेट जैसा लगता है, क्यों जी आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा रेडियो ब्रिस्बेन में। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए अब ऑस्ट्रेलिया से चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया आज 94th इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व कर रहा है और इस साल का थीम है इनफैलिबल, इंपरवियस एंड प्रिसाइज। हमारे ब्रेव एयर वॉरियर्स को सैल्यूट है जो आसमान की हिफाजत करते हैं, और उनके लिए भाई एक बिग सैल्यूट फ्रॉम रेडियो ब्रिस्वानी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और टेक्नोलॉजी की अपडेट जानते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का 10th एडिशन न्यू दिल्ली में चल रहा है दोस्तों, जहां पर टेलीकॉम, 5G कनेक्टिविटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी फोकस है। सो दोस्तों, है ना मजेदार बात। जाने की थोड़ी देर बाद वही फिल्म इंडस्ट्री की तड़के झटके वाली बातें ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। कहीं मजा आएगा, सुनते रहिए और जुड़े रहिए रेडियो ब्रिस्वानी में। आइए एंजॉय करते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में अब वक्त है बॉलीवुड की दुनिया में थोड़ा सा झांकने की। सबसे पहली बात जो कि बहुत ही दुखद खबर है भाई, इंडियन सिनेमा ने एक बहुत ही पावरफुल एक्टर को खो दिया है। जी हाँ, एक्टर और फिल्म मेकर नाना पाटेकर जी का 75 इयर्स की एज में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी डेथ जो है वो गोवा में सस्पेक्टेड कार्डियक अरेस्ट के बाद हुई है। उनका करियर हिंदी और मराठी सिनेमा में लगभग दोस्तों 5 डिकेड्स तक रहा है, और साथ ही साथ परिंदा, क्रांतिवीर, सलाम बॉम्बे और वेलकम जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी परफॉर्मेंसेस ऑडियंस के दिल में हमेशा रहेगी। उनकी एक्टिंग में एक रॉनेस थी, एक इंटेंसिटी थी, और स्क्रीन पर आते ही अटेंशन ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चला जाता था। रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से उनको हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रेसवाणी में। तो आइए, यहाँ पर बॉलीवुड की बात कर ही रहे हैं तो अब थोड़ा सा भाई बात करते हैं हम उड़ता तीर के फैंस की। जी हाँ, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की उड़ता तीर को लेकर भी अपडेट है। फिल्म की रिलीज डेट जो आज यानी कि 9 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन आज वो पोस्टपोन होकर 23 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। मेकर्स ने रिपोर्टेडली क्लीनर रिलीज विंडो के लिए डेट शिफ्ट की है। तो आयुष्मान सारा फैंस आप बस रेडी रहिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगली अपडेट की, जो कि है भाई हॉरर लवर्स के लिए। दोस्तों, प्रार्थना भीष्ट स्टारर बख्शी की रिलीज भी पोस्टपोन हो गई है। फिल्म को 9 अक्टूबर को रिलीज होना था, लेकिन CBFC रिव्यू के बाद रिलीज डेट जो है 4 दिसंबर 2026 कर दी गई है। रिव्यू में जो है सुपर नेचुरल थीम्स, विचक्राफ्ट और ग्राफिक वायलेंस को लेकर भी डिस्कशन हुआ है। मतलब हॉरर मूवी भी बोल रही है भाई, थोड़ा वेट करो, डर और बड़ा आने वाला है। जी हाँ, और बढ़ने भी वाला है। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्बेन में, जहां पर हमने इतनी इंडिया की अपडेट्स जानी है, इंडिया की न्यूज जानी है, ऑस्ट्रेलिया की न्यूज जानी है, ब्रिस्बेन की न्यूज जानी है। तो दोस्तों, यहां पर हमने फिल्मी तड़के के बारे में भी बहुत सारी बातें की हैं। तो अब वक्त है भाई मोटिवेशनल कुछ बात करने की, जो हमारे लाइफ में हमारी बहुत मदद कर सकती है। ब्रिस्बेन फैमिली, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आज आप सभी को। एक बार एक आदमी ने अपने गार्डन में एक बीज बोया। रोज सुबह वो ना उससे उस बीज को पानी देता था। एक हफ्ता गुजरा, कुछ नहीं हुआ। दो हफ्ता गुजरा, कुछ नहीं हुआ। एक महीना भी गुजर गया, फिर भी जमीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आया। उस आदमी ने सोचा कि शायद ये बीज खराब था, उसने पानी देना कम कर दिया। तब उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आए और बोले, बेटा तुमने पानी देना क्यों कम कर दिया? उसने कहा, फिर इतने दिन हो गए कुछ निकल ही नहीं रहा, लगता है ये बीज ग्रो ही नहीं करेगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम जमीन के ऊपर देख रहे हो बेटा, लेकिन बीज जो है वो जमीन के नीचे अपनी जड़ बना रहा है। और फिर उन्होंने कहा, हर ग्रोथ दिखाई नहीं देती बेटा। वैसे ही दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम मेहनत करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता। और फिर हम सोचने लगते हैं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है आपके रिजल्ट अभी जमीन के नीचे हो, आपकी मेहनत रूट्स बना रही हो, आपका पेशेंस आपको स्ट्रांग बना रहा हो, आपकी फेलियर्स आपको फ्यूचर सक्सेस के लिए भी प्रिपेयर कर रही हो। इसीलिए दोस्तों, अगर आज आपकी लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हैं ना, सो प्लीज गिव अप मत कीजिए, क्योंकि बीज को भी पेड़ बनने में वक्त लगता है। और याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। और मैं एज ऑलवेज कहती रहती हूँ, आपका वक्त किसी और के वक्त से कंपेयर मत कीजिए। किसी का रिजल्ट जल्दी आ गया, किसी का थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई। हो सकता है आपकी कहानी अभी लिखी जा रही हो। तो आज फ्राइडे की सुबह एक प्रॉमिस खुद से कीजिए, मैं अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं अपनी छोटे प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करूंगा। जी हाँ, तो ये थी आज की मोटिवेशनल बात जो हमें लाइफ टाइम काम आने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, रेडियो ब्रिस्बेन से लेती हूँ विदा। मंडे फिर मिलेंगे, फिर से करेंगे नई बातचीत। और फिर आप वीकेंड को एंजॉय कीजिए, और फिर मंडे बताइएगा कि आपका वीकेंड कैसा गया। दीजिए मुझे इजाजत, टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन। और हाँ जी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।

नमस्कार, मैं सताक्षी। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701। भाई सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हथियारों की होड़, सोने की लूट और वसूली कांगो में M23 युद्ध की आड़ में फल फूल रही मलेशिया की शैडो इकोनॉमी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में जारी गृह युद्ध ने अब नया और खतरनाक रूप ले लिया है। यहां हथियारों की गूंज के पीछे सिर्फ देशभक्ति का नारा नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर की शैडो इकोनॉमी काम कर रही है। रवांडा समर्थित M23 विद्रोही समूह के साथ छिड़ी जंग की आड़ में स्थानीय मलेशिया ने बंदूकों, सोने की खदानों, सड़क टोल और फिरौती के जरिए अपना एक विशाल वित्तीय साम्राज्य खड़ा कर लिया है। नेपाल, फ्रांस के बाद अब ब्राजील में जेनजी आंदोलन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। फ्रांस के बाद अब ब्राजील में भी छात्रों के प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी रियो डी जनेरिया में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्लाविओ बोल्सोनारो के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने ब्राजील में दक्षिणपंथी विचारधारा के बढ़ते असर के विरुद्ध भी अपना गुस्सा जाहिर किया। कनाडा की एन कार्सेन को साहित्य का नोबल, लेखन की अनूठी शैली ने दिलाया सर्वोच्च सम्मान। कनाडियाई लेखिका एनी कार्सेन को वर्ष 2026 के साहित्य के नोबल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। स्वीडिश अकादमी ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का ऐलान करते हुए कहा कि एनी कार्सेन को उनके साहसी और कल्पनाशील लेखन के लिए ये सम्मान दिया गया है। तालिबान से ज्यादा ताकतवर सेना फिर भी अफगानिस्तान में जमीनी फौज भेजने से क्यों डर रहा पाकिस्तान? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों की सेनाओं और तालिबान लड़ाकों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। हालांकि सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान अफगानिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जमीनी हमला करने की बजाय मुख्य रूप से हवाई ताकत का इस्तेमाल करने की नीति अपनाई है। हवाई क्षेत्र में पूर्ण प्रभुत्व होने के कारण पाकिस्तानी वायुसेना आसानी से अफगानिस्तान सीमा में प्रवेश कर TTP संदिग्ध के ठिकानों को निशाना बनाती है और फिर सुरक्षित वापस लौट आती है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। नाना पाटेकर की मौत के बाद दर्ज हुआ मेडिको लीगल केस। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह कार्डिक अरेस्ट से निधन हो गया। 75 साल की उम्र में एक्टर ने गोवा के डोनापाला स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली, जहां सुबह करीब 5:20 पर उन्हें कार्डिक अरेस्ट आया। उन्हें तुरंत पास के मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लगभग 45 मिनट तक लगातार CPR देकर जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने शुरुआत में कार्डिक अरेस्ट को मृत्यु का कारण बताया है, लेकिन फिर भी मेडिको लीगल केस दर्ज करने की जरूरत पड़ी। असल में कई स्थितियों में अस्पताल कानूनी नियमों के अनुसार MLC दर्ज करते हैं ताकि मौत की परिस्थितियों और कारण का आधिकारिक दस्तावेज तैयार किया जा सके। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

से जो पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है. शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ. सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन. ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट. होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी. टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156. आई रिपीट, 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं. आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं. दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026. इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर

डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वेटिक सेंटर

इलाज लई मुफ्त किट भेजांगी। होर जानकारी लई फायर एंड्स क्वींसलैंड जां फायर एंड्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: बिग ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी।
1: हाय दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी।
2: हाय दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी।
3: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिजवाणी, दिस इज आलिया।
4: हाय, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी
5: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिजवाणी, दिस इज शाहरुख खान।
6: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी।
7: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय Aussies माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: उमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे,
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मतबा अपने मामू श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, मामू जान मेरी तमन्ना है कि मैं शैतान से मुलाकात कर लूं, इबलीस से मुलाकात की तमन्ना है। मामू श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा आज तक इसकी तमन्ना किसी ने नहीं की, वो बड़ा चालाक है, गुमराही के रास्ते पर ले जाता है, क्यों उससे मिलने की तमन्ना करते हो? अरे जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मामू जान दिल में आता है कि उससे मुलाकात थोड़ी कर लूं। फरमाया, अच्छा अल्लाह को मंजूर होगा तो मुलाकात हो ही जाएगी। एक मरतबा जुमा की नमाज पढ़ करके मस्जिद से वापस घर तशरीफ ले जा रहे थे, हाथ में तस्बीह थी, जिक्र करते हुए चल रहे थे, सामने से एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे आने लग आता हुआ नजर आया। ये अपनी नजरें नीचे करके जाने लगे, जब उनके पास से वो बूढ़ा आदमी गुजरा तो पीछे चल करके उसने ये कहा, लोग भी कैसे हैं कि मिलने की तमन्ना करते हैं और जब सामने आते हैं तो मिलते नहीं, ये लोग कैसे हैं कि मिलने की तमन्ना करते हैं और जब सामने आते हैं तो मुलाकात नहीं करते हैं, तवज्जो नहीं करते। जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने परख करके देखा, पूछा, कौन? फरमाया, आप उससे मिलने की तमन्ना करते थे, मजदूर बन गया, तुझे ये हुक्म दिया रब्बुल आलमीन ने कि आदम के सामने सजदा कर लो, तुमने सजदा करने से इनकार कर दिया, तूने अल्लाह के हुक्म को कैसे तोड़ा? सजदा करने का हुक्म दिया, तुमने सजदा नहीं किया और गुमराह बन गया, मलऊन बन गया, मजदूर बन गया, कैसे तुझे हिम्मत हुई कि अल्लाह के हुक्म के सामने झुक करके सजदा नहीं किया? इबलीस ने पलट करके कहा, जुनेद मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, आदम खुदा है? अरे जुनेद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अरे इबलीस, हजारों आदमियों को तूने गुमराह कर दिया, मलऊन मजदूर बन गया, तुझे ये हुक्म दिया रब्बुल आलमीन ने कि आदम के सामने सजदा कर लो, तुमने सजदा करने से इनकार कर दिया, तूने अल्लाह के हुक्म को कैसे तोड़ा? सजदा करने का हुक्म दिया, तुमने सजदा नहीं किया और गुमराह बन गया, मलऊन बन गया, मजदूर बन गया, कैसे तुझे हिम्मत हुई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल में ये बात डाल दी, जुनेद बताओ इनको, पूछो इनसे कि मैंने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, तू आदम को मत देख, मेरे हुक्म को देख, मेरे हुक्म के सामने तुम झुक जाता, हुक्म मेरा था, तेरे रब का हुक्म था, तूने मेरे हुक्म को तोड़ा, आदम को मत देख, जब मैं हुक्म दूं किसी चीज का तो फिर उस हुक्म के सामने झुक जाओ, तूने मेरे हुक्म को तोड़ा, ये तेरा हुक्म का तोड़ना ही मेरे लिए नापसंद था और तू गुमराह हो गया। अरे जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इबलीस क्यों तुम धोखा देता है मुझे, तूने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, चाहे वो जो भी हुक्म दे दे, बंदे का काम है कि उसके सामने झुक जाओ, उसके हुक्म के सामने अपने आप को गिरा दो। जुनेद बगदादी ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तूने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, ये कहना था कि आग का शोला निकला और चिंगारी निकली आग की भड़कती हुई और भागते हुए कहते हुए चला, जुनेद मैंने इस तरह से बहुत सो को गुमराह कर दिया लेकिन तू बच गया। इतना बड़ा दाव सरकारी दुआलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब सुबह सूरज निकलता हो तो नमाज पढ़ना मना है, हालांकि नमाज अल्लाह की इबादत है, सूरज बिल्कुल बीच में आ जाए, जवाल का वक्त हो तो उस वक्त नमाज पढ़ना मना फरमाया, सूरज बिल्कुल डूबता हुआ हो तो नमाज पढ़ना मना किया गया, हालांकि नमाज बहुत बड़ी इबादत है लेकिन हुक्म रब है कि इन वक्तों के अंदर नमाज मत पढ़ो, अल्लाह का हुक्म

0: के सामने हमने नमाज को छोड़ दिया तीन वक्तों में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, अल्लाह के रसूल सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इस साल में पांच दिन रोजा रखना मना है, ईद उल फितर के दिन रोजा रखना मना है, पूरा महीना रमजान का रोजा रखने का हुक्म दिया गया, ईद के दिन मना किया गया। मालूम है कि अल्लाह का हुक्म है कि रोजा मत रखो। ईद उल अदहा के दिन और उसके बाद तीन दिन और चार दिन ईद उल अदहा के वक्त में रोजा रखना मना किया गया, गुनाह है रोजा रखना, अल्लाह के हुक्म को तोड़ना है। तो जहां अल्लाह तब्बुल इज्जत हुक्म दे कि यहां ये काम करो, बंदा का काम है करें, जिस काम से रोक दे रुक जाए, और जिस काम को सरकारी दो आलम हजरत नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है उस काम से रुकना, और जिस काम का हुक्म दिया उसके करने की तालीम दी उस काम को करना, यही ईमान। वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, हमारा रसूल जिस बात का हुक्म दे उस काम को कर लो, और जिस काम के लिए मना फरमाए रुक जाओ। ये कुरान करीम की आयत है, वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिन बातों का हुक्म और जिन बातों के करने की तालीम दी दे सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लो, और जिन बातों से रोक दे रुक जाओ, ये है ईमान। ईमान उसी का तो नाम है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर अपने आप को झुका देना। अल्लाह के वली ऐसे ही होते हैं। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहि उम्मत की बरगुजीदा खातून गुंजी है, अल्लाह की वलिया है, बड़ी बरगुजीदा नेक खातून है। इंतकाल के बाद किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा तो ख्वाब में पूछा, राबिया अल्लाह के फरिश्तों ने कब्र में तुम्हें से सवाल किया तो तुमने क्या जवाब दिया, क्या मामला पेश आया? राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, फरिश्तों ने आकर के जब पूछना चाहा कि मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, बड़ी बरगुजीदा खातून थी, मकाम नास पर थी, कहने लगी बताओ तुम कहां से आए हो, कितनी दूर से आए हो? फरमाया कि आसमानों से आया हूं, आए हैं अल्लाह के हुक्म से आए हैं। फरमा कितना दूर है आसमान से लेकर इस कब्र तक आने पर? फरमा 500 साल का, 500 साल का वक्त लगता है, 500 साल का सफर होता है, हम अल्लाह के हुक्म से थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। फरमा इतने दूर दराज से तुम आए, क्या यहां आने के बाद तुम अपने रब को भूल गए? फरमा कैसे भूल सकते हैं, फरिश्तों ने कहा हम अल्लाह के कैसे भूल सकते हैं? फरमा इतनी दूर से आए, इतने ऊपर से आए और अल्लाह को भूले नहीं, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है उस बंदी के मुताबिक जो जमीन से नीचे 4 फीट 5 फीट नीचे चली गई, क्या वो अपने रब को भूल सकती है? जिस रब को मैंने जमीन के ऊपर जिंदगी भर याद किया और पुकारा, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, क्या ये चंद थोड़ी सी दूर कब्र के अंदर आकर भूल जाऊंगी? मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि जिस खुदावंदे करीम को मैंने जिंदगी भर रब्बी रब्बी कहा, कभी वो खुदा भी मुझे कहते हैं कि मेरी बंदी मेरी बंदी? इतना मकाम नार है, हर आदमी बोल नहीं सकता है। ऊपर से आवाज आई मेरी बंदी को, कह दो ये मेरी बंदी है, मेरी बंदी है, ये मेरी बंदी है, इसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। तो ये मकाम आप है, जब वो अल्लाह की वलियां बन गई, अल्लाह के हुक्म पर चली, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनके साथ ही मामला किया। हम भी अल्लाह के हुक्म पर चलेंगी, अल्लाह के दीन पर चलेंगे, तो अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत नसीब हो जाएगी, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, दुनिया के दोस्त नहीं अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। बस ये तालीम दी है अल्लाह की पाक किताब कुरान करीम ने और सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए। रब करीम हमें अपने दीन से मोहब्बत नसीब फरमा दे, तकवा की आला से आला सिफत नसीब फरमा दे, ईमान कामिल नसीब फरमा दे और अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
1: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 to 9:30.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग बरतर जात।
1: और रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमा प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 79 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

आज सुबह विंटेज कवाली की शुरुआत हमने कर रहे हैं चुने हुए दो हम्द सल्यूटेशन जो भी आप चाहें उसको बोल सकते हैं तलत महमूद से ओल्ड विंटेज रेसिटेशन बाय तलत महमूद। उसके बाद हम पेश करेंगे हमारा साप्ताहिक और रेगुलर सेगमेंट ओल्ड विंटेज कवालीज़।

यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हर हफ्ते की तरह आपके खास प्रोग्राम आज जुमा है। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 10 बजे तक, 9 से 9:30 बजे तक आप सुनते हैं हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान को, और उसके बाद हम आपके लिए पेश करते हैं चुने हुए ओल्ड विंटेज मजहबी कवालियां हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। और आज सुबह हमने शुरुआत किया कुछ रिस्टेशन तलत महमूद से, तो चलो जारी रखते हैं अब ओल्ड विंटेज मजहबी कवालियां आपके लिए रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।

ना करे बदम रात को रोशन तो चारों सिंध को फैलाता नूर का दामन। कुछ इस तरह से हुए महवई से परवाने के नूर शमा को सम...

खुशी खुशी चले परवाने शमा देने, उन्हें ये वहम था बेबाक होने जाते हैं, खबर न थी कि वहां खाक होने जाते हैं। मिट गए सारे अरमां दिल के, मिल गए खाक में शमा से मिल के, फूल की तरह खार को समझा, नूर की मानिद नार को समझा, रंग लाया नजरों का धोखा, जल के मरे परवाने रे बाबा दूर के दूर सुहाने, धोखा न खा दीवाने रे बाबा दूर के दूर सुहाने। गुलों का रंग बुलाता है दोस्ती के लिए, मगर है खार भी मौजूद दुश्मनी के लिए, पसंद आती है नजरों को संख्या लेगी, पयाम मौत है इंसान की जिंदगी के लिए। नजारा दूर का करता है यूं असर हम पर, नजर को होता है मोती का धोखा शबनम पर, दिखाई देता है शक्कर की तरह हमको नमक, फरेब देती है हीरों का पत्थरों की चमक, पत्थर को हीरा न समझना, पीतल को सोना न समझना, आंख से देखो अक्ल से जानो, जब हो यकीन दिल को तब

जो हमसे ज्यादा मोहब्बत का राग गाते हैं, हर एक बात भी जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो बार बार तुझे भाई भाई कहते हैं, ये भेड़िए हैं मगर भेड़।

खुलूस हो तो जरूरत नहीं नुमाइश की, हकीकी इश्क को हाजत नहीं नुमाइश की। अगर यकीन नहीं आजमा के देखने, तुझे मिटाएंगे अपना बना के देखने। इनकी हस्ती जैसे शरारा, दूर से अच्छा जिसका नजारा। दूर से देखो दिल बहलेगा, हाथ लगाओ हाथ जलेगा। इनकी नजर में एक है दोनों अपने या बेगाने।

इस्लाम से थी कैसी मोहब्बत रसूल को, इस्लाम से थी कैसी मोहब्बत रसूल को। करता हूँ कलम बंद जब एक वाकया, रावी से रिवायत है सुने मोमिने जरा, था किस कदर ख्याल नवासों का बरमला, असहाबे मोहम्मद ने मोहम्मद से ये पूछा के उल्फत ज्यादा रखते हो किस नूरे ऐन से, फरमाया मुस्तफा ने हसन और हुसैन।

0: वरमला। ये इस्लाम बेगर वक्त खतरनाक आएगा, अल्लाह का हबीब भी कुर्बान जाएगा, अल्लाह का हबीब भी कुर्बान जाएगा।
1: हर जुमे के दिन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं रिलीजियस कवाली, मजहबी कवालियाँ, ओल्ड विंटेज कवाली, हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई। मैं हूँ आपके साथी फिरोज खान।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए मजबी कवालियां, ऑल विंटेज कवालियां हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई।
1: यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। आपका साथ देता हूं हर जुमे के दिन 9 से लेकर 10 बजे तक और फिर हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक, फिर हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक। 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान, बहुत खूब।

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।